चरणा से ठहके इस प्यार वाले मन ने अरदास की थी। नारद जी तुष तानो जो मेरे भगवान दे दर्शन जा रहे हो, नारद तुसी तानो जिन्हां नूं मेरे भगवान दे दर्शन मिलनगे, नारद ने तकिया प्यार वाला मन ए प्यार वाला कोई तपस्वी अखां विचों अथरू के रहे। नारद ने किया क्यों रोंदा है, तैनू भी किसी चीज की लालसा है, जंगल बियाबान दे विच समाधि लगा के बैठे हैं, तू की चाहता है। इस दिया कुब्बा निकलिया ते प्यार नाल इसने पढ़िया, नारद मेरी तो एको मंग है केड़ी।

आप अर्थी जी आशा वाला जीवन बड़ा स्वादला हों खुशरी भाई आशा वाले जीवन में आस है ना इंतजार है ना एद बड़ा सुख है एद कोई अगम्मी रस है साई की याद मालिक की याद यादा भी पूरी हो जाए पर प्यारी सत्संग याद विच भी रहना यह भी एक अवस्था है मालिक के दर्शनों की प्यास विच इस जीवन बतीत करना हजूर फरमाते मैं उस तो भी कुर्बान जाता हाँ जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तहके बल पर जैसा इस प्यास च जीवन बतीत होता रहे फिर आपे मालिक मेहर करे प्यारी सत्संग जे एदियां आसां पूर्ण तां साडियां भी पूर्ण आखो श्री अकाल।

कौन? मिठ बोला गुरु। कदे भी कौड़ा नहीं बोलता। हर समय मिठाई बोल। दुनिया का उद्धार करता एडा दयालु गुरु है। जे गलतफहमी विच आके कोई इस नूं वट्टे मारदा है, ए गुरु ओदे नाल भी प्यार करदा है। कौन है ओ जिहा मिठा गुरु? प्यार नाल सारे आखो धन गुरु नानक। आओ इस परोपकारी गुरु का नाम एक बारी सारे जपो, कोई रसना भी खाली ना रह जाए। सारिया नूं दातां देण वाला हिंदू मुसलमान सारी सृष्टि के बंदिया नाल प्यार करन वाला मेरा गुरु नानक। आओ तुसी अदब सत्कार विच आओ, जिस तरह जुड़े हो गुरु नानक दे प्यार विच, नेत्रां द्वारा दर्शन मन जुड़िया है। आओ रसना भी पवित्र करो, प्यार नाल सारे आखो धन गुरु नानक। अजे भी सारे ने नहीं किया। गुरु नानक दा नाम लाभदायक है। ख्याल आएगा भी कितना क लाभ है गुरु नानक दा नाम जपण दे नाल, क्योंकि आपां सारे विहारी हां ना। कोई काम करिए ओदा लाभ पहला सोच ले, चाहे दफ्तर जाण वाला है, चाहे दुकान ते बहण वाला, कोई भी किता करन वाला है। अपनी ड्यूटी देंदे हां सोचदा है भी इतनी क मैनू आमदनी हो रही है जां इतनी क मैनू तनखा मिल रही है। कईयां नूं ख्याल आएगा कि भाई गुरु नानक दा नाम जपिया मिलदा की? आ जांदे ना मन च होया, मन के ही करदा करदा रहिंदा। कदे गुरमुख बन जांदा है, कदे मनमुख बन जांदा है, कदे दानी बन जांदा है, कदे मंगता बन जांदा है, कदे पुन्नी बन जांदा है, कदे पापी बन जांदा है, कदे नीवा हो जांदा है, कदे उच्चा चढ़ जांदा है टीसी दे उत्ते, कदे बुरा हो जांदा है, कदे भला। यह मन का स्वभाव है। तो फुरना बन जांदा है ना। तो आओ पहला पूछिए किसी महापुरुष नूं, जी तुसी रब दे प्यारे हो, गुरु नानक दे प्यारे हो, दसो जे गुरु नानक जपांगे तां की मिलेगा? ओ लिखिया है महापुरुषां ने, नाम लिए सतगुरु नानक के, नाम लिए सतगुरु नानक के, दुख दर्द रोग मिटे सो भयानक। नाम लिए सतगुरु नानक के, सुख संपत भोग मिले सो अचानक। नाम लिए सतगुरु नानक के, जग काग चुगे मिल मोती मानक। सारी संगत मिलके आखो धन धन गुरु बाबा। यह तो है किसी गुरु दे प्यारी दी दलील। पर आओ गुरु तो पूछी, गुरु तो किस तरह पूछांगे? बाणी द्वारा। बाणी द्वारा गुरु नानक बोल रहे हैं। बाबा जी वड्डे बाबा जी बचन करदे, संतो पावना बना, गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते तू पावना बना गुरु नानक वाली। रोज कहिंदा जागदी जोत, जे जागदी जोत जान के तू पूजा करेगा। ए बाबा जी दी पवित्र पावन रसना तू बचन सुने है। बाबा जी कहिंदे सन रुमाल चुकण दी कोई लोड़ नहीं, आपे हुक्म मिलेगा खुश रही। ये तन्ने दा पत्थर बोलदा है साडा हाजर नाजर, जागदी जोत प्रगट गुरां की दे, गुरु ग्रंथ साहिब नहीं बोलता। बोल बाणी सदा बोल रही है, गुरु बोलता। तीन अखर लिखे होंगे चौरस तेज स्टाफ, तेज गड्डी आ रही है, जिन्हें स्टाफ कर लिया एक्सीडेंट तो बच गया। स्टाफ बोल रहे हैं तीन अखर, दुआइयां पै देंगे बोलते हैं ना। किस तरह उठ जाके ब्रेक लगा देने, कोई होर तो नहीं बोले, किसी ने होर ने तो इशारा नहीं किया, अपने आप ही ब्रेक लग जाती। प्यारी साध संगत वो तो तीन अखर हैं जिन्होंने स्टाफ के उत्ते अमल किया एक्सीडेंट तो बच गए, जिन्होंने अनगहली की मोटर मुद्दी फौरन हो जाती। पर तीन अखर मैं बोलते हैं इधर तो प्यारी साध संगत 1430 सफा पे बोलता है, कुछ एक एक अखर रुपया बोलता है। सुन के जे ना मनिए तो यह साड़ी कमजोरी है।
ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲਤਾ, ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਤੁਰਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਤੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਸ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਂ

जिन्नी तुदनु तन के आ तेन जम नेड़ नया। कितनी बख्शिश होती किना उते जिन्होंने गुरु नु तन के है आओ तन गुरु नानक दियां बख्शा प्राप्त करने वाली सर्वत्माई पाई प्यार नाल सारे आखो तन गुरु नानक।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद मानिया है। असी आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाब विच करते हो तो आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चिया पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच दोस्तां विच घर दे नौकरां चाकरां नाल दा समा उनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिया, ओ गुरुद्वारे जाके की लाभ।

संगत करन दा अवसर आउंदा है। ये तीसरा निर्धन नूं पालना सी, किसे दा हक ना मारना, माया दा भी सेवा दा भी। मैनूं याद है मैं शहीदां दे जोड़ियां दी सेवा करी दी सी, ते कई सज्जन नहीं सी उहनां नूं संगत कदी नहीं आए। हुण जोड़ा रखण वाला एक हुंदा सी ते लैण वाले दस हुंदे सी। तो जिन्हें जोड़ा फड़िया उन्हें फटाफट खाने च रखना, ते फिर जिन्हें जोड़ा लैना भावे ओहदे कोल ना खलोते होना, परे खलोते होना, पर सब नूं पासे करके ना फिर जोड़ा। ये भी सेवा दा हक होना ध्यान देना। ये छे सत बाकी ना सेवा कर लैण, मैं कर ला अपने वालों, तो कहिंदा मैं सेवा कर रहा ज्यादा इन्हां नालों, दूजियां दा हक हो रहा। रुमाल लैके अंदर जिहड़े खाने च पए ने झाड़ भी सकदा, बुरश लिया के वह भी सेवा कर सकता है।

बहुत प्रसाद करावे, पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसे महापुरख दी। ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा मनुख इस भयंकर रोग विच फसे है।

अर्जन देव जी अपने शब्द विच फरमान कर देंगे, निंदक दी ए निशानी है जदों किसे दा भला हुंदा होया वेखेगा ते दुखी होएगा, ते जदों किसे दा बुरा हुंदा वेखेगा उदों प्रसन्न।

अजर गुरु नानक साहिब महल दी दरगाह विच जुड़ बैठी सात संगत गुरु रामदास पातशाह अपनी बाणी विच फरमाउंदे ने, जिन्ना चिर मेरे ते गुरु नानक साहब की कृपा नहीं हुई, जिन्ना चिर मेनू गुरु नानक साहब नहीं मिले, मेरे ते साहब नहीं टुटे, मेरी की अवस्था सी जी। हजूर कहिंदे ने कौन सतगुरु,

लाल गोविंद नाथ मंगोरिया देह दस मन चाओ न जाए सूर्य देह दस मन चाओ न जाए।

परम सत्कार योग सत संग जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़भागियों दूरों दूरों चल के करो गीत ध्यान संकोच के शरदा प्रेम भावना लेके जागत जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों में पुजे आके गुरमुख प्यारियां तो गुरबाणी का कीर्तन गुर इतिहास सरवण किया। जिन्ना समा होर महाराज बख्शते ने अज इस पंडाल का पंजवां समाप्ति का दीवान है। सारिया संगतां गज बज के बोल के शरदा भावना नाल जिहड़ी संगत बाद विच आ रही है शांति दे नाल गुरु महाराज दा अदब मुख रखे जिथे जिथे जगह मिलदी है सतगुरां नूं हाजर नाजर समझ के बैठना ते लाहा प्राप्त करना। बहुत वड्डी कृपा होवे उदों सतगुर पातशाह जी कृपा करदे ने नगरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं घर विच सेवा ते सिमरन दी दात बख्शदे ने। बाकी दातां जरूरी हन जीवन दा निर्वाह माया गुजरान है बहुत जरूरी ने पर मनुष्य दी समझ ज्ञान इस तल ते रुक गया कि अपनी जरूरत नूं मंजिल समझ बैठे। एक मंजिल हुंदी है एक लोड़ हुंदी है जरूरत। जरूरत तो बिना मंजिल ते पुज्या नहीं जा सकता पर जे मंजिल ना आई ते लोड़ां व्यर्थ गई। जरूरत ते मंजिल इनू जटकी भाषा विच समझ लो जो कणक बीजी गई है रे बूटे दी जरूरत है पानी बूटे दी जरूरत है गुडाई करनी बूटे दी जरूरत है। ते गुरमुख प्यारियो मंजिल की है झाड़ निकले दाने पैदा हो। हुण दोवां दा संबंध किन्ना है ते गुरमुख प्यारियो सेवा तो बिना खर्च तो बिना बूटे दी जरूरत तो बिना झाड़ नहीं निकलना। पर जे झाड़ ना निकलिया वो रे पानी व्यर्थ गया। झाड़ की है वो भी तुहाडे सामने दी किरिया है। गुरबाणी ने तो फैसला किया है आ जिहड़ी बाणी पढ़नी है ना नितनेम करना ये क्यों शुरू किया कीर्तन क्यों शुरू किया कथा क्यों शुरू की लो जे तुसी सच गल समझो इन्हों की लोड़ नहीं सी। ए मजबूरी है मनुख दी समझ लो गुरमत विचों एक सानू अख दती है एक गुरमुख प्यारे वो कन दता है फिर मत दती है समझण वास्ते। जेड़ा आदमी देख के समझ जावे उन्हूं बोलण दी लोड़ नहीं हुंदी। जेड़े बंदे नूं देख के समझ आ जावे आ चीज आ है उन्हूं बोल के दसण दी लोड़ नहीं। जिन्हूं दिखे ना उहदे वास्ते बोलना ही साधन है। अंधा बंदा उन्हूं कहना पऊगा तेरे मूहरे चिक्कड़ है भी पासे हो जा उत्थे बोलण दी लोड़ पई
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਗਿੱਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਗ ਵਰਤੂਗੀ ਹੁਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।

अज पूर्णमासी दा ए समा ते पूर्णमासी हो जिस दिन सर्दी बल्दी दुनिया नु तारन वास्ते मेरा धन गुरु नानक प्रगट होया करो अरदास भाई ते गुरु नु नेत्रां च विसाओ हिरदे ते विसाओ।

पिताजी मेरे नंकारी वीर नु ना मारो, मेरे रब्बी वीर नु ना मारो। पर मैं ते कालू दे अंदर गुस्सा सी। बेबे ने कहा पिताजी 20 रुपये की होते, 20 रुपया बदले मेरे ननकारी वीर नु कुछ ना खो। अज ओ मेहता कालू पश्चाताप कर रहा है, सड़ जावन ए हाथ जिना हथां नाल मैं नानक नु चपेड़ा मारी। राए मेरी अरदास सुन के कदे भी नहीं आवेगा नानक। राय बुलार दिया पुब्बा निकल गई। कालू हुण तां रो रो के अखां दा पानी भी सुक गया। राय बुलार दीवाना होया फिरदा है गुरु नानक दे प्यार, गुरु नानक दे प्यार। लोकी कहंदे राय नूं की हो गया, पर राय बुलार दुनिया नूं मुखातब होके कहंदा की

अरदास, सारी रात अरदास की थी। अमृत वेड़ा हो गया, बेबे ने सोचे घर विच दुध है, माता बेसुध पई है, दुध कौन रिड़केगा। फिर बेबे उठी, सुबह उठ के पैन इशनान कीता, करदी पाठ ते दही रिड़काउंदी ए, दही रिड़के सोहना मक्खन कढ़े। बेबे ने अपने सुंदर हाथ दे उत्ते जिसले चिट्टा चिट्टा मक्खन रखेया, बेबे नू फिर अपना वीर याद आ गया। वीर वे बचपन विच वी मां कहंदी सी ना, नानकी तेरा वीर कुछ नहीं खांदा पींदा, इहनू कुछ खिला। वीर मैं अपनी तली उत्ते मक्खन रख लैंदी, ते कहंदी सा वीर मैं अखां पहले खोलदी आं कि तू पहले मक्खन मूंह च पांदा है। बड़े प्यार नाल तू आके निमाणी भैण दे हत्थां तू मक्खन चुक के मूंह च पा लैंदा। अज भी ओही भैण वीर आए मक्खन तू खा, मक्खन तू खा।